0: अगुने वो अगुने अकुशी है पेन अगुने अगुने वो अगुने का कच्ची कोला अकुशी है पेन अगुने का मारो लगा ए पेन जो अंचोगा पुते ए पेन कच्ची कोने वे अंबे पा ये ने पे ये तो ये अंबे पा ये अंबे पा ये न्यूरा ये पेन ए चला या को तपुम पकुन जोंने वे काजिन ला तुन जो चेता पुन जो चेता वे चेता गुने का ए पेन अगुने का
1: 义都部落有个古老的习俗，逝者生前所用的物品都会随其一同入土陪葬。也正因如此，想要寻回那些曾陪伴族人走过山林岁月的刀具，几乎是一件不可能的事。幸而泛黄的老照片里，老人们的记忆里还珍藏着刀与族群共生的往昔故事，而义都人与刀的羁绊，甚至化作了舞步里的传承，凝结成部落独有的刀舞。
2: 哎，没按到，没按到丢，俺去再把那二棍子给接你，人家丢，刚把哎呀妈把那二棍子给接，把这接巧。